जुसुल पाथौ नेपाल सम्बचिन्छ सो पी खुद यनला थो पञ्चमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार संघीय संसदीय निगु सदन बैठक थौ चुने च्याङ्गुदु छुथे निनेसिया छताइले सिंहदरबार चुनेको प्रतिनिधि सभा बैठक के महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी मचामस्त नापा या नापाङको संशोधन विधेयक 2083 दोथे विचा यामा धैको प्रस्ताव न्यवया दिगु ज्यादल दुस अथियाना छता इजुए झिङ्याको मिनेटे राष्ट्रिय सभा बैठक चुने टेङ्गु डु थौया बैठक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय नेपाल स्वापु दुगु मौखिक न्यासया लिसा बिगु ज्याधल दुसा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया संक्रामक पशु लुए नियन्त्रण विधेयक 2083 दति समिति प्रतिवेदन सभा नेपाल दुत बिआदिगु च्यासोदु अध्ययन बैठक विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेल मधेस प्रदेश तोनेगु ल सरसफाई व जलस्रोत व्यवस्थापन नापाया अध्ययन प्रतिवेदन 2083 दति सलह या मान्दैको प्रस्ताव निभया दिगु च्यासोदु अथियाना थौ थिति स्वङ्गु संसदीय समिति बैठक चुने टेङ्गुडु अर्थ समिति शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति व राज्य निर्देशक सिद्धान्त नीति व दायित्व या कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बैठक चुनेगु ज्याथल दुगु संघीय संसद सचिवालय जानकारी बिगु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल देय सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित तथा केन्द्र खेतया परराष्ट्र नीति न्याकेता सरकार पूर्ण कथम प्रतिबद्ध जुयागु धुवा थुका दिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगया बैठक सांसद त नापाया नेसलिस परराष्ट्र मन्त्री खनाल राष्ट्र याता केन्द्र खेतया जलाखला नापा मित्र राष्ट्र नपाया सफिया त अझ सेला के त सरकार प्रतिबद्ध चुयाको दया दिगु ख पार्वत भ्रमण या झोले परराष्ट्र मन्त्री खनाल बिया दिगु नोचुया विशेष न्याङ्गु न्यास लिस मन्त्री खनाल थगु नोचुया आशे नापा निसे खने दया वया चोङ्गु आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण व परराष्ट्र नीति व कूटनीति या संकीर्ण राजनैतिक अस्त्रीकरण स मुक्त जुई गु थका थुवा थुका दिल मन्त्री खनाल जलाखला दे नापा या स्वापु आन्तरिक राजनीतिक लभ हानि या औजार देखे गु महामुदुगु कुत जुगुली नापा या बोझ कथ जुया चोङ्गु ख या त ओकिया त तो त न्याजा त आयागु सरकार या त हसना बिता सोयागु धया दिल अथियाना सांसद पिन्ना पाया नेसली सया झोले भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल गुठी जग्गा नापाया हाठ्या जेङ्के त सरकार ब्याग्ल ब्याग्ल नुगु विधेयक हे त सङ्गु कना दिल मन्त्री रावल गुठी विधेयक या त सरकार आफ्ना थाया बिया चुनागु नेथना दिसे मजी मगाको कानुन प्रक्रिया पुवङका पश्चिम फको याक्ना संसदीय दूत बी मागु ध्या दिल मन्त्री रावल गुठी जग्गा मुक्क जमिन या स्वामित्व जग्गा मजुसे धर्म संस्कृति परम्परा सम्पदा संरक्षण व गुठिया आन्दामी स न्यायगु जात्रा नखा नापा कुचा जुई मफैगु संवेदनशील विषय जुगुले तयारिया थुकिया ज्याया नीति यी बी मागु ध्या दिल मन्त्री रावल नापा राष्ट्रिय सभासँग गुठी विधेयक लिता वोगु ख या त ध्याने तया सरकार विज्ञ व सपुतैपी नापा सलह ब्याका चुनागु थया दिल प्रतिनिधि सभा मिगया बैठक सांसद जलवायु फाया हुने नेपाल फया चुने मागु प्राकृतिक हाठ्याया कष्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय कथन जलवायु न्याय या कुतयागु धया दिगुदु अथेयना बैठक सांसद पिसम विपद विस्थापित भूमिहीन जनता यता व्या व सामाजिक सुरक्षामा कथ व्यवस्था युवा लजगा या वाता ग्यास अभाव या हाठ्या नहङ्के त सरकारी कार्यालय तेके प्राविधिक विकास भ्रष्टाचार हाकुकु बचाओ महँगी नियन्त्रण नापाया समसामयिक विषयसँग सरकारी ध्यानको सल्लाह दिल हसना पाखे जलवायु हुफा या लिचो फे मागु सङ्घ प्रदेश

0: स्थानीय तहदती बल्लाक सहलह मगा गुनापा थया दिल हथियाना मन्त्री चौधरी चपु नयाँ वे त सङ्गुले हिमताल त जाइगु जोखिम उपया चोङ्गुले प्राणी जगत यता तह धङ्गु कष्ट जुइफैको नेथना दिलसा मन्त्री चौधरी जलवायु हुफाया हुने खुसीबा खुसी कटान खडेरी व डडेलोया हुने कृषि पशुपालन तपेङ्क लिचो लाइगुले नसा जल सुरक्षा के लिचो ठेनीगु ख्याचोना पाबिया दिल उगु बैठके सांसद तेसा लिपाङ्गु इले मडिका वोगु वाया हुने देया थिति जिल्लाके वोगु खुसीबा चलखेलाना मनु त सिगु छु मनु त तनाचङ्गु सलंसा मनु त विस्थापित जुगु सडक झाँका उपया चङ्गु नापाया विशेषना सरकारी अध्ययनको सल्लाह दिगु खस सांसद पिसा सडक झाँका मयागु नीति सडक पूर्वाधार सुधार सवारी जोलया प्राविधिक जाँच राजमार्ग स्थानीय सडक तेगु जोखिम मसिका हो पिङ्केगु नीति सुङ्गु तल सरकार संविधान सुईमा जुई मागुले विचापङ्का दिगु दुसा अध्ययना नेकपा एमाले संसदीय दल या उपनेता पदम कुमारी अर्याना भोटे खुसी खुसीबास मालेगु उद्धारे सरकार लिचो या ज्या लिचो लाइगु कथन ज्या या मफुगु धका कुङखिना दिगु खसा उप अथे या न प्रतिनिधि सभा मिगा बैठक इक उपनेता अर्याल सरकार खुसीबास मालेगु व ग्वाली या नीति थथ्य सार्वजनिक आह्वान इनाप कुटनीति कुत ग्वाली या मागुलि सरकार लिउने लाना चोङ्गु व ठिटी इन्जिनियर व ठिटी विज्ञापनी नापा सहल मयागु धका कुङखिना दिगु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने इनापे ठाउँ सर्वदलीय बैठक चोनिगु गोसादु रासोपा प्रवक्ता जगदीश खरेलिया कथम बैठक ठाउँ सुथे चिन्छता इलेसिया दरबारी दुगु रासोपा संसदीय दलीय कार्यालय चोने च्याङ्गु ख बैठक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन या नीति उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र निशोनीको विशेष सहल जुई धागु बैठके थिति दलिया चोछ्या बहपी नेता तेगु बोती दैगु न रासो पाधागुदु रसुवाया भोटे कोसी खुसी वोगु खुसी बा हुने डिनाचङ्गु पृथ्वी राजमार्ग नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्डे लाइगु कृष्ण फिरे ट्र्याक च्याकीगु ज्यापुङ्गुदु थै भदौ 28 गते निसे परीक्षण या कथा यातायात सेवा यहाँकागु यहाँकगु दुसा वैगु असोस 1 गते निसे पूर्ण कथा यातायात यहाँकीगु जुगुदु प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह थै भदौ 17 गते संघीय संसदे क घागु झोले रसुवाया खुसी बा सङ्गु कृष्ण भीर खण्ड भदौ ल्या दुने कोचा कि गु ध्या दिगु ख वैकथम पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थो खण्ड ट्र्याक च्याकी गुज्या न्याक गु ख सडक विभाग या सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर व नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन सडक खण्ड या गोसासा संयोजक सुरेश पौडेल या कथा खुसी बाया हुने थो सडक खण्ड क्षति छ्याङ्गु ख थो थो खुसीबा वने साता पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मजी मगागु अध्ययन याना लचागु ख भोटे कोसी खुसीबा लाना आतक झिन्सोस गुई घुमाम सिया सिमा लुइक गुदु खुसीबा लिपा अझना यादो सचिव नेगुमा मनु सम्पर्क पिने दु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मिग सनिल सार्वजनिक याको धलक थ चितौने सोस व खुइपेमा नवलपरासी पूर्वे निसौ व सुइनीमा नवलपरासी पश्चिमे निसौ निनीमा नुवाकोटे निसौ निमा रसव्या सचिव चे गुमा गोर्खा हे च्यामा धादिङे नेनीमा तनहुई सुइ च्यामा स्या सिमलुया व गुदोस वासा झोले येस निमा मनु सिगु प्राधिकरण धागुदु आतक लुइकगु सीमा मध्य सचिव पेमास्या सनाख जुई धुङ्गकु दुसा लियन दुपिनिगु चिमाया मसिका नीति डिआने परीक्षण नापाए या प्रक्रिया निहजा धुङ्गकुदु प्राविधिकरण या प्रवक्ता शान्ति महत्या कथा खुसीबा लिपा आतक झिन सोधन हेस पिनिमास्या उद्धार यागुदु मकवानपुरिया इन्द्र सरोवर गाउँपालिका दुई सुकौर्या मिग जुग इभी गाडी झाँका लाना सिपिनीमा मसिका जुगुदु यस एटोरा पाके वना चङ्गु इभी गाडी सडकसँग अथे 60 मिटर कुहे कुतवना थो झाँका जुया पेमा मनु सिगुदु सखुमा मनु घापा जुगुदु घापा जु पिन्ता यहाँ या ट्रमा सेन्टर हेटौँडा अस्पतालले वास जुया चङ्गु प्रहरी धापुदु नेपालले हे डेङ्गु या आपला जोखिम दुगु बागलुङ्गे स्क्रब टाइफस बुलङ्गना चङ्गुदु बागलुङ्गे डेङ्गु या संक्रमण या हुने बागलुङ बजारे छ्यापतिक बिरामी या लिया उपया चोङ्गु दुसा स्क्रब टाइफस या बिरामी उपगुदु जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारे आफ्ना बुलाना चङ्गु डेङ्गु या हुने आतक झिम्पेस सोमा मनु पिन्ता थोल्ये लुए थिगु दुसा नेपाले आफ्ना कथा थोल्वे बोलाना चोङ्गु धागुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल व नेपाल नीति संयुक्त अधिराज्य बेलायती राजदूत रफ फेन थि नाप्लाई ज्याजुगुदु। नाप्लाई ज्याजोले बेलायती राजदूत फेन नेपाल शिक्षा लाग्या बेलायत सरकार याना वया चोनागु ग्वाली या त वैगु दिने न मड्डी कल लहाना चोनेगु धया दिगुदु। नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउमा वैगु मङ्सिर 21, 22 र 23 गते नीति गोसा गोइतासँगु झिङ्याकाको महादेवी सैन्य ज्या जुइत सकल दथि इनाफेना दिगुदु। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मङ्गलबार जुद्ध बारुण यन्त्र खोप कार्यालय ता सोया दिगुदु। खोपया दुधपाटी दुगु जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय थेङ्का गृहमन्त्री सुदन गुरुङ याता कार्यालय प्रमुख विजय धाउ बडेल दमकल आयाको अवस्था विशेषण जानकारी याका दिगु। ये महानगरपालिका यागु ज्या सम्पादन या नापाङ्गु मूल्याङ्कन कथन हेगु फुटी यागु अङ्क वोगु दु। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलिया नाया सुइसन चोङ्गु ये च्याखगु। कार्यपालिका बैठक नापाङ्गु लिचो दथि सहल याना पृष्ठपोषण या नीति मजी मगागु धल जिल्ला समन्वय समिति सन्छुएगु कोचिगु दु। गरिमा विकास बैङ्क भोटे कोसी खुसी बासन लिचो लापी मनोतेगु उद्धार राहत पुनस्थापन या नीति 6 करोड 6 लाख ग्वाली यागु दु। आदेश पिन्याबुख इरान थगु शर्त पुमाउने बेले तक अमेरिका नपा छुन कथा या सहल मया गुलिस कागुदु। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तेहरान याक्न सम्झौता या त एकगु व वासिङटन वार्ता हाक्न या त फुइगु दावी यास यागु टिप्पणी या लिसस इरान राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिव मोहसेन रजाया थो प्रतिक्रिया ब्यादिगु। अमेरिकी राष्ट्रपति ल्वाक ज्यागु ख्याचो स मज्ञा त इनाफिया से सचिव रजाई छुन वार्ता तयारी मजुगु नेथना दिसे थपिन सहलय नीति तयार जुया गुन तयार दिगु दुसा जलमार्ग जखया जोखिम हुपा दुगुले नियन्त्रण कायम जुया चोनिगु वैक्लान तयार दिगु दु। वङ्गु जुन 18 अमेरिका इरान लेब्लान नापाया फुक्कन लाग्या युद्ध हङ्के त समझदारी ज्ञापन पौ एमओयु स लाची त गुख। जलवायु उपाय हुने उपाय चङ्गु हाठ्या मौसमी झाँका तेगु प्रभाव पृथ्वी वातावरणीय अवस्था निगरानी या त युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी इएसए निगु पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तालाक कक्षके छोगुदु। फ्रान्सेली फ्रान्सेली गुयाना खेदुगु कौरौ अन्तरिक्ष केन्द्रसँग सोमबार चाहिने बेगा सी रकेट पाखे फ्लेक्स सेन्टिनेल 3C उपग्रह प्रक्षेपण यागु। आ मौसम जानकारी ठाउँ कोशी बागमती प्रदेश हिमाली लगाया छुन थासे व गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली लगाया मोहथासे मलनापा लाप्सा तोय मध्यम टकै अभाव वैगु चफुकुहाँ वैगु सम्भावना दोसा। कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लगाया छुन थासे व कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाडी लगाए मोहतासे मला नापान लाप्सा तोय मध्यम टकाया वाविगु सम्भावना दु। अथियाना मध्य प्रदेश नापान कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश तराई लगाया छुन थासे व लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लगाए मोहतासे मला नापान लाप्सा तोय वाविगु जुगु दुसा। कोशी प्रदेश हिमाली पहाडी तराई लगाए व बागमती व गण्डकी प्रदेश पहाडी व तराई भूभाग छगुनिगु थासे आफ्ना वाविगु सम्भावना कुबिगु। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धापुदु थौन हिने मिगन हिने ए सोनिग्या क्वाज निच्यागु फुटिकुगु डिग्री सेल्सियस दति चोन दासा थौन हिने ए सोनिग्या क्वाज निच्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दु। रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुगन हिने चिन्छ त अहिले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस शुभ।
1: NBL सर्वसुलभ आवास कर्जा बब्बाल फेस्टिवल अफर
2: अब बन्छ सबैको सपनाको घर किनकि हामीसँग छ सर्वाधिक न्यून ब्याज दर।
1: परिवर्तनीय ब्याज दरमा 4.95% वा स्थिर ब्याज दरमा 5.99%।
2: विशेषताहरू ₹2 करोड सम्मको कर्जा सुविधा।
1: घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण तथा मर्मत सम्हार गर्न
2: 25 वर्ष सम्मको लचिलो कर्जा अवधि,
1: न्यून सेवा शुल्क, न्यून ब्याज दर,
2: सम्पूर्ण शाखाबाट कर्जा प्रवाह। थप जानकारीको लागि आजै आफ्नो नजिकैको शाखा कार्यालय वा कल सेन्टर 01-597-1222 सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: शर्तहरू लागू हुनेछन्।
3: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
4: सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको निर्देशनको सदैव पालना गरौँ।
5: नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक विभाग।

प्रस्तुत छ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

0: सिक्किम से निना चुनादीको ख रेडियो नेपाल अले थौ बुधबार नेपाल भाष्य ज्याजो जीवन दोबु जनाजी ज्याजो न्याकामी उपेश मर्चन सिक्किम नि न्याने प्राविधिक पासा लक्ष्मण विष्ट नपौ याचना अले थौ या जीवन दोबु ज्याजोसँग इन्जिनियर ज्ञानु राजा मर्चन सिक्किम न्याने उया चोङगुदो लस्कुस्तु इन्जिनियर ज्ञानु राजा मर्चन
1: यकैको शुभ उपेशजी
0: हजुर सुभा हना बना तयाले जना भाजमेजमी वेकली से भदौ 10 गते नेपाल ओ चीन या सिमाना लिक जुगु च्वापु चल अले लोन्दे खुसी व भोटी खुसी त्रिसुली खुसिया खुसीबा उकियागु जन्दन या छेतिलिपा मोनु मालेगु ज्या उद्धार व राहत्या विशेष नियनकनी यागु जुई थोसिवे न वेक नाप वेक्ल अन झाया याना दिगु ड्रोन या विशेष खलाब्ला यागु जुई निन भाजमे सुपी वेक लिसे खलाबाला यागु जुई अले निन भाजमे छिकमुन छुन वेक या त नेस दशा 4/11/721 4/11/736 छिमसे छिकमसे फोन यान वेक लिसे चाहिँ खलाबाला याना दि फै थासे इन्जिनियर ज्ञानु राजा मर्जुन जो आछि भोटे खुसी खुसीबा लिपा जोखिम मोले नाछि अनुसुली भोटे खुसी चाहिँ झाइदिल नाच अफ हेरेन खलाबला जुले भौतक दस गते छि नेपाले मरु चिने छि धाइदिल छु ध्यादि थो विशेष छि भोनि
1: जुन भौतक दस गते भोटे खुसी खुसीबा वया जुन एकको जनधन यो क्षति जुगु दु उकै सन्दर्भ जीवट ओ समयले जे चिने ख
0: हजुर
1: ओ जुन खुसीबाओ निन्य छौ तरौँ भख्याबो रिकर्डु टिबेट पाखी वे कारणैना ओ टिबेट साइडियो जुन ओ लाङटाङ हिमालय छौँ चल वङ्गु अनुमान याउडु ओठेन्टु विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान जोयाचङ्गुडु
0: हजुर
1: वे पहाडियो चलाउना तरौँ हिम पहिरो खुसी वया वया खुसी झिउप्टि रसवगढी छौ बोर्डर चिन ओ नेपाल बोर्डरे जुया तरौँ खुसीबाको ख अहिले ऊ खुसीबा वन ढुङ्गा जुन अन्न राहाट युप्टी खौँल जुन ओ मानव जीवन यो रक्षयो खौँल ऊ के यो सन्दर्भ जी ड्रोन यो टेक्नोलोजी छौ छ ख
0: थन
1: नेपालले ड्रोन 2011-2013 बिचै भरिभरि आइएनजिओ एनजिओ पाखे छौ रिसर्च सन्दर्भ थन डुवाओ ख वया लिपा 2015 विक्रम सम्बत 2072 साले तरौँ भखा बोल

चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी रङ्गनी दा ठेनमुला गै इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभा लातिनी लाची साङ्ग्री सांसद कादेसे रेदाङसे आरेना आताबासे कादेरी लेबा टाङ्गा दा च्याङना लाबारी थेन युल्बासे ज्याना लासी सोबारी खाम्बा वातावरण सोची पिनबारी सरकारला ध्यान छेङना लाबामुला सांसद कादेसे ग्रेन प्रिबा कादे गामगामरी खावन लामा बजारी चाबासे ग्यास थेन स्यान्दो से कादेनोन आयाङबा टाङ्गा लाना किनबासे चुराङबा समस्या दा छाङना लासी पिनबारी सरकारला ध्यान छेङना लासियु बाहिनला चुराङ लासिन सांसद कादेसे भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भाल प्रभावित थुम्री कोबा ह्याम कादे लेबारी वाङबा माबा मिदा माइबारी थेन उद्धार लाबा गे प्रभावकारी सोबारी आखाम्बासे चुदा व्यवस्थित लाबारी संसद से बेनान ग्लेटिम दल्ला छ्याम्री ग्रेन स्तरीय समिति सोबारी माग लाबा मुला सांसद कादेसे नोङबा सडक घ्यालाम कादे योना ठोङबारी बिजुली ग्याम सेङबा मोटर दुर्घटना च्याङना लाबारी ड्राइभरला सी परीक्षण लातोबा थेन लाइसेन्स पिनबा ठिम ज्याबा सोबारी खाम्दोबा ताम्रिन सरकारला ध्यान छेङना लुई थेन चाबासे स्वच्छता ब्लोन निसा मेहतासे जिउ निला मृङ मेमेदा लुई सेवा पिनबा थेन सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित लाबा गे युल्ला दायित्व हिनला बिची सुङबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङ्री ब्लोन मेहतासे आमा थेन कोलाला लुई थेन सुरक्षा दा प्राथमिकता पिनबान सरकारी लुई गेन्दुन्डी प्रसुदी सेवा टाङ्गा आकिन्ना पिनबारी थेन यातायात खर्च पिनबान खावा ताम्री छोरङान लेना लाबारी खाम्दोला बिसी सुङबा मुबा चिसाङ्री विधायन व्यवस्थापन समिति लाचोहो कृष्ण बहादुर रोकायसे रा मे मुइदा ताबा कोबा याम नियन्त्रण लाबा विधेयक 2083 सम्बन्धी समितिला प्रतिवेदन सवारी थान्सुबा मुबा चुबिमा गाछा राष्ट्रिय सभाला तिनी चिबा चिसाङ्री सांसद कादेसे संयुक्त राष्ट्र संघला ग्रेन ह्वाल्डी जलवायु पोबासे नेपालला ज्योमो थुम्री ताबा असर लेबान निबा ग्लिङ ढुई ताइबा थेन ज्योमोदा सोना लाबा ताम्री मोक्युल्ला ध्यान छेङना लाबारी खाम्दोला बिसी सुङबा मुबा सांसद कादेसे मोक्युल्दा जलवायु पोबा असर च्याङना लाबारी जिम्मेवार सोतोबा ताम्री नेपालसे मोक्युल्ला ढाजाङरी जलवायु क्षतिपूर्ति थेन जलवायु न्यायदा भङ लाबारी सरकारदा पाङबा मुला सांसद कादेसे जलवायु पोबासे भोटे कोसी थेन त्रिशुली गान्धीरी खाबा भाल प्रभावित युल्बादा राहत भो लाबारी थेन उद्धार लाबारी सिबा मिला दिम थेमेदा क्षतिपूर्ति पिनबारी घाइते कादेला टाङ्गा आकिन्ना मान लासी पिनबारी थेन विस्थापित ताबा कादेदा सुरक्षित ग्लारी थानबारी पाङबा मुला राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी असोज लाला नी कुनु दिनेरी टिसेदा ताबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाचोहो रवि लामी छानेसे ङेसुबा सर्वदलीय चिसाङसे विपद व्यवस्था पण्डित सहजीकरण लाबारी सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र सोबा निर्णय लाबा मुला चिसाङसे संसदी पोकिनबा ग्लेठिम दल कादेला गोबाङ लाबा लासी हप्ता घिक नाङरी विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्था पण्डित संसदीय विशेष समिति सोभारी सुङबोन्दा पाङबा निर्णय लाबा हिला चुराङ लासिन सर्वदलीय चिसाङसे भदौ चुइला कुनो तिब्बत ग्याम खाबा रसुवा भोटे कोसी भाल्ला मिन थान्दोबारिन सरकारदा मोइजेन लाबा निर्णय लाबा मुला चिसाङरी पोकिनबा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीला गोबन माधव कुमार नेपालसे काइब्लोन बालेन्द्र शाहसे पोकिनबा संयुक्त राष्ट्र संघला चिसाङरी जलवायु पोबासे नेपालसे नातोबा क्षति रिबारी सुङबा मुला चिसाङरी नेपाली काङ्ग्रेसला चोहो गगन थापा रापापा गोबोन ज्ञानेन्द्र शाही जनमत पार्टीला चोहो सिके राउतला छ्याम स्यान्दो गोबोन कादेसेनोन पो किन बाबुबा काइब्लोन बालेन्द्र शाहथेन नेपाली स्युबा अमेरिकी ग्लेबोन खाङला गेतेनबा ग्लेबोन मेगन बोल डेन्से रूपतासी लेङमोला सिउबा मुला काइब्लोनला घेजाङरी रूपतामा जलवायु विपदला जोखिम च्याङना सोभारी थिएन चुला प्रभाव सम्बोधन लाबारी जाम्बुलिङ लान बङ तादौला बिसी काइब्लोन से सुङबा मुला काइब्लोन साहसे भोटे कोसी भाल लिछा अमेरिका से नेपाल दा लाबा रोदा थुजेछे सुङबान भालरी नेपाली छ्याम स्यान्दो युल्ला मिनी नोन प्रभावित ताबासे
राङदा आच्याबा ङाम्बा मुलाबिसी सुङबा मुबा गे तेनबा ग्लेबोनो बुल्डिन्से भाल ग्याम ताबा छेतिरी दुखा मानबान दातेला चुधुरी अमेरिका नेपाली मिनिला छ्याम मुलाबिसी सुङबा मुबा युलु चोह रामचन्द्र पौडेल होन्छाङ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत थिएन वित्त आयोगला नोर्दिङ 2082-83 तिदिङ प्रतिवेदन थान्बा मुला युल्चोहो गेजाङरी तिनी सेङबा घेखोरी आयोगला गे तेनबा चोहो विपिन राज निरौलासे युल्चोहो ओन्छाङ प्रतिवेदन थान्स्युबा हिन्ला बिसी युल चोहोला गेजाङसे पाङबा मुला सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे कला रिमठिम थिएन युलबाङ महतोला ताम्री शोभा फिलिमदा रो लाबारी सरकार प्रतिभत्त मुलाबिसी सुङबा मुला एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर अवार्ड्स एन्ड साइन्सेस अक्सर ओस्का अवार्ड ला कुचुई कुछा संस्करणी नेपालला गोबाङ लाबा फिल्म तिमीहरू एलिफेन्ट्स इन द फग ला टोली थिएन तिनी ब्लोन खाङ्री रूप तामा संचार ब्लोन डाक्टर तिमिल सिनासे कला थुम सोना लातोबा गे हुल्बा लान हिन्ला बिसी सुङबा मुबा संचार ब्लोन तिमिल सिनासे फिल्म थुम्ला विकास थिएन प्रभारधान्डी ब्लोन खाङ ग्याम तोबा रो लाबारी सरकार तयार मुला बिसी सुङबा मुबा काइब्लोन बालेन्द्र साहसे संघीय संसदरी लेङ्मो थान्छ्युबा धुरी सुङबा रा नाङरिन पृथ्वी राजमार्गला नागढुङ्गा मुगलिन सडक ग्यालाम्ला कृष्ण भिर ट्र्याक ठोङबा गे जिन बामुला रसुवाला भोटे कोशी घान्दिरी खाबा भाल लिचा सरकारसे लाबा घेला ताम्री भदौ चुई निला कुनो प्रतिनिधि सवारी लेङ्मो थान्छ्युबान काइब्लोन साहसे कृष्ण भिरी बन्द ताबा ग्यालाम भदौ लारिन ठोङबा बिसी सुङबा मुबा काइब्लोन से सुङबा अनुसार पूर्वाधार विकास ब्लोन खाङला गोबाङरी होजा ग्यालाम चु निचुई भ्रेला कुनु हेन्से फरिक्षण लाबारी मोटर सेङबा मुबा बिसाम नाङ्गार हेन्से निलो पट्टी घ्याम्नोन मोटर सेङसेदा ताबा मुला दिम्ब्लोन सुदन गुरुङसे जुद्ध बारुन एन्द्र भक्तपुर गेजाङ च्यासिउबा मुला खोपङ भक्तपुरला दुध पाटिरी मुबा जुद्ध बारुन एन्त्र गेजाङरी दोस्युबा दिम्ब्लोन गुरुङदा गेजाङ ग्रेन्पो विजय धौबडेलसे धमकल्ला ताम्री लेङ्मो थान्स्युबा मुबा दिम्ब्लोन गुरुङसे मे चोलमा साइबारी ड्रोन प्रविधि खासी जिन्बा मुला सुङबान चु ताम्री सरकारसे गोबा विशेष सुङबा मुला गेजाङला ग्रेन्पो धौबडेलसे गोर्नी ड्रोन बाबारी खामसाम नोबा घ्लारी चोलबा मेदा साइबारी साहस ताला बिची सुङबा मुला सरकारसे चुपालसे प्रविधि थेन उपकरण ग्लुबारी लाक कुचुई भ्ली फेबा मुला सरकारसे आमादा च्याङनारी लाडुला तलब छ्याम कोला आमा ताबा बिदा थिएन आपादा ब्लिचुई निरा प्रसुदी स्याहार बिदा पिनबा व्यवस्था लाबारी प्रस्ताव लाबा मुला ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतमसे सुरक्षित मातृत्व थिएन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 संशोधन लाबारी शोभा भिदेग्री चु व्यवस्था प्रस्ताव लाबा मुला बिसी सुङबा मुला सामाजिक सञ्जाल ग्याम तिनी ब्लोन गौतमसे होजा विधेयक दारेम ब्लोन सेङझाङ लाचिसाङरी बोरबाथेन चु लिचा संसदी थान्बा बिसी सुङबा मुला भोटे कोशी भालग्याम ताबा छेतीला विवरण किनबारी रसुवा जोङरी मेन्दो निचुइङा सदस्य तथ्याङ्क मूल्याङ्कन समिति शोभा मुला जोङ समन्वय अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अर्याल्ला थुतबोन्डी समिति शोभा हिला महोत्तरीला बर्दीबाज नापी गेजाङरी मिनी कादेथेन घुस किनबान लाबा धुरी मेन्दो गिग्दा चुङबा मुला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गेजाङ बर्दीबासला टोलीसे तिलमा मिनी कादे ग्याम लाख गिक घुस किनबान लाबा धुरी नापी सर्वेक्षक दा चुङबा खिला चुराङलासिन सोताङ गाउँपालिका सोलु खुम्बुला रो चोहो अन्जु नाछिरिङ राई ला छ्याम मेन्दो नि विरुद्ध नोन भ्रष्टाचारला मुद्दा पिनबा मुला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगला सुङबोन सुरेश नेउपानेसे सुङबा अनुसार नोर्दिङ 2080-81 री ढाकाला क्वान सिलाई बुनाई तालिम सेङमा टाङ्गा तोरमार लासी भ्रष्टाचार लाबा मुद्दारी राईला छ्याम मेन्दो निदा चुङबा हिला
जोङ प्रशासन गेजाङ काभ्रे पलानचोक से प्राथमिकता दा च्यासी ग्रेन टोकन ग्याम सेवा पिनबा रीती बामुला गेजाङ से सेवा पिनबा च्यासी असक्त मिनी कादे लाइन्ड्री भान्सी चिबारी आखाम्बा कादेदा पिङ टोकन ग्याम सेवा पिनबारी ती बाहिनला गेजाङ ला प्रशासकीय अधिकृत सुनिता थापा सेसुङबा अनुसार गिक्षा प्राथमिकता री खेप्पा खुयु जिउनी ताबा जामेकोला अपाङ्ग ताबाथेन गादिङ धोनाला जाजा कोलाला आमासे ब्रान आतोबा ताबा मुला डेंगु ला ग्रेन जोखिम रिमुबा बागलुङ्ग्री स्क्रफ टाइफाइस नोन लेबा मुला बागलुङ्ग्री डेंगु संक्रमण से बागलुङ बजार ला मोकोन दिम री आखाम्बा मिनी मुला विसाम नामसारी क्यार स्क्रफ ट्राइफाइस ताबा मिनी नोन लेबान निबा मुला बागलुङ्ग्री साउन हेन्से धाते दोना तोङ्गी ग्यार्जा ब्रिसे मेन्दो सोम मिनी दा डेंगु ताबा स्यापा मुला चु तथ्याङ्क नेपाल लान स्यान्दो जोङ कादेरिन लाना हिन्ला बिसी प्रदेश जनस्वास्थ्य गेजाङ से पाङबा मुला सर्लाइला सिरसियारी मोटरसाइकल ठोकमा मेन्दो नि मिनी शिवा मुला विसाम मेन्दो नि गम्भीर घाइते ताबा मुला कविलासी नगरपालिका निस सिरसियाला मङ्गल गवा

झाझाकोला शिवा मुला विसामा मेन्दोनी गम्भीर घाइते ताबा मुला तिलमा न्यासे बागमती नगरपालिका ब्ली गोले टोल्डी तिब्लिङ टाइमा होजान ग्लारी चिबा ठाकुर सिंह मोक्तानला जामे चुई नि दिङला दिना मोक्तान शिवा हिनला तिब्लिङ से टासी गम्भीर घाइते ताबा झाझाकोला नाम्सालान लुई गेन्दुन्डी मान लवन लामा शिवा हिनला होजा घटना ग्याम हस्त बहादुर बमजनला जामे चुइगीका दिङला प्रीतिमा बोमजन थेन ब्लिचुई नि दिङला पोसाक बहादुर वाइबा गम्भीर घाइते ताबा मुला स्यान सिबान मुबा स्वानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झा सा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक व्यवस्था जगेवाक सम्बन्धी विधेयक 2083 प्रमाणीकरण कयलनि अछि। राष्ट्रपति संघीय संसद सब बैठक सब पारित भ प्रमाणीकरण के लेल पेश होबा आयल विधेयक के प्रमाणीकरण के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य जारी केने प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाल गेल अछि। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता गर्भवती महिला के स्वास्थ्य सेवा आ सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करब राज्य के दायित्व भेल बतौलनि अछि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में मंत्री मेहता माय तथा नवजात शिशु के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्राथमिकता में रखत सरकारी स्वास्थ्य संस्था में प्रसूति सेवा में निःशुल्क उपचार सेवा यातायात खर्च के सेहो व्यवस्था कयल गेल संबंध में जनचेतना वृद्धि करबाक लेल आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मंत्री मेहता विभिन्न अस्पताल समय आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा EHS तथा डिजिटल सेवा विस्तार तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका सबके सुविधा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन हित सुनिश्चित करबाक लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तीनों तह के सरकार बीच समन्वय भ रहल सेहो जानकारी देलनि। बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया संक्रमण पशु रोग नियंत्रण विधेयक 2083 संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश कयलनि। ऐसे पहले राष्ट्रसभा के बैठक में सांसद सब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में जलवायु परिवर्तन से नेपाल के हिमालय श्रृंखला सब में पड़ल असर बढ़ रहा हिम पहिरुआ हिमालय क्षेत्र के संरक्षण में विश्व समुदाय के ध्यानाकर्षण करबाक चाहे धारणा रखलनि। सांसद सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण करबा दिस जिम्मेवार बनाबा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में जलवायु क्षतिपूर्ति और जलवायु न्याय के लिए पहल आगू बढ़ायल जेबाक चाही पर जोर दिलनि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण भोटे कोसी आ त्रिशूली नदी में आल बाढ़ से प्रभावित नागरिक के राहत आ उद्धार मृतक परिवार के उचित क्षतिपूर्ति घायल के निःशुल्क उपचार के व्यवस्था तथा विस्थापित भेल सबके सुरक्षित बसोबास के व्यवस्था हेबाक चाही सांसद सब बतौलनि। बैठक के आकस्मिक समय में सांसद सब महिला हिंसा न्यूनीकरण किशोरी सबके लक्षित साइबर बुलिंग रोकथाम आ सब प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार करबाक लेल मांग कयलनि। सांसद सब बेरोजगारी सृजना सीमा क्षेत्र के सुरक्षा बढ़ावा महगी नियंत्रण किसान के उत्पादन के सहज बाजारीकरण मध्य प्रदेश में आधारभूत सेवा विस्तार आ दलित बाल बालिका के निःशुल्क शिक्षा में पहुँच के प्रभावकारी अनुगमन लगायत विभिन्न समसामयिक विषय समय सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक परसू आसिन 2 गते शुक्र दिन 1:15 में बैसत। संघीय संसद सचिवालय डिजिटल पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म के परीक्षण शुरू कलक। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल और राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल संयुक्त रूप में ई प्लेटफॉर्म शुभारंभ कलन। अय अवसर पर सभामुख आर्याल डिजिटल प्रणाली कोनो विलासिता नहीं भ वर्तमान युग के आवश्यकता भेल बतौलन। संघीय संसद के गतिविधि विधेयक के अवस्था सांसद के विवरण बैठक तथा समिति के सूचना नेपाल के संसदीय इतिहास संबंधित अभिलेख से 21 डिजिटल प्लेटफॉर्म में समेटल जेबाक प्रयास कयल गेल। ओ बतौलन संसदीय अभिलेख दीर्घकालीन रूप में सुरक्षित रखत नागरिक के सहज एकीकृत रूप में उपलब्ध करेबाक उद्देश्य के संग शुरू कयल गेल डिजिटल प्रणाली के आवे वाला अधिवेशन शुरू होबे से पहिने थप परिष्कृत कयल जेबाक सभामुख बतौलन। डिजिटल पार्लियामेंट अखन परीक्षण के चरण में रहला से प्रयोग के क्रम में देखल गेल कमी कमजोरी के संबंध में सुझाव देबक लेल ओ आग्रह कलन। प्राप्त सुझावक आधार पर प्रणाली के थप सरल सहज प्रयोग मैत्री तथा प्रभावकारी बनोबित ल जाय बतौलन। राष्ट्रसभा के अध्यक्ष दहाल लोकतंत्र के मजबूत आधार संसद रहला से सूचना प्रविधि के विकास संगे परिष्कृत संसद बनायल जेबाक चाही पर जोर दिलन। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल संग नेपालक लेल भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव आई विदाई भेंट कलने। परराष्ट्र मंत्रालय में भेल विदाई भेंट में परराष्ट्र मंत्री खनाल सफल कार्यकाल संपन्न करने प्रति हुनका बधाई देने मंत्रालय जनौलक। परराष्ट्र मंत्री खनाल नेपाल भारत संबंध के थप बहुआयामिक बनाबा राजदूत श्रीवास्तव निर्वाह कने भूमिका के प्रशंसा कलन। ओ नेपाल भारत बीच ऊर्जा सहकार्य व्यापार पूर्वाधार तथा संपर्क संजाल के क्षेत्र में
भेल महत्वपूर्ण प्रगति आ दू देश के जनता बीच के संबंध के संबंध में चर्चा कलन। अना भोटे कोशी नदी में आयल विनाशकारी बाढ़ पश्चात नेपाल भारत देखौनी ऐक्यबद्धता तथा विपद के खोज उद्धार आ राहत के लिए कैने शीघ्र सहयोग प्रति परराष्ट्र मंत्री खनाल कृतज्ञता व्यक्त कलन। ओ राजदूत श्रीवास्तव के आवे वाला कार्यकाल तथा भावी प्रयास के लिए शुभकामना व्यक्त कलन। भेटक क्रम में भारतीय राजदूत श्रीवास्तव अपन कार्यकाल में नेपाल सरकार से प्राप्त सहयोग आ सहकार्य प्रति प्रशंसा व्यक्त कलन। सरकार माय के कमती में 6 महीना तलब सहित के प्रसूति विदा आ बाबू के 42 दिन धरि तलब सहित के प्रसूति देख के छुट्टी देवाक व्यवस्था के लिए प्रस्ताव कलक। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोहिता गौतम सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य से अधिकार ऐन 2075 संशोधन के लिए तैयार कैल गेल विधेयक में ई प्रस्ताव कैल गेल जानकारी दिलन। सामाजिक संजाल मार्फत आयो ई विधेयक आब मंत्री परिषद में लौ जाब आ ओहि पश्चात संसद में पेश कैल जेबाक बतौलन। मंत्री गौतम बदल रहल जीवनशैली आ काज के चाप के कारण अधिकांश परिवार एक वा दू संतान में सीमित भ रहल अवस्था में नवजात शिशु आ परिवार के पर्याप्त समय देवा अभिभावक के सहयोग करब राज्य के जिम्मेवारी भेल बतौलन। प्रस्तावित व्यवस्था हिसाबे माय कमती में 6 महीना तलब सहित के प्रसूति छुट्टी भेटबाक आ बाबू के 42 दिन धरि तलब सहित के ओहि प्रसूति के देखभाल कर के लिए छुट्टी देव के व्यवस्था कैल जात। मंत्री गौतम बच्चा जन्मावे वाला प्रक्रिया माय संग जोड़ल गेल आ बच्चा बढ़ावे वाला जिम्मेवारी माय के मात्र नै भेल चर्च करत अभिभावकत्व साझा जिम्मेवारी भेल बतौलन। अखन कार्यान्वयन में रहल सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार के व्यवस्था कलक। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संग अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिन शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने। प्रधानमंत्री के कार्यकक्ष में भेल भेंट में जलवायुजन्य विपद के जोखिम न्यूनीकरण तथा ऐ के प्रस्ताव प्रभाव के संबोधन करबाक लेल विश्वव्यापी सहकारी आ सामूहिक प्रयास के आर सुदृढ़ करबाक चाही प्रधानमंत्री पर जोर देने चले थे। प्रधानमंत्री के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल के हिसाबे प्रधानमंत्री शाह नेपाल के विशिष्ट पर्यटन संभावना तथा ऐ के विकास मार्फत पारस्परिक लाभ हासिल कर सकबाक अवस्था के संबंध में चर्चा करबाक संगे नेपाल में अमेरिकी लगानी और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन करबाक लेल हुनका अनुरोध कलन। प्रधानमंत्री साहब भोटे कोशी बाढ़ पश्चात के कठिन परिस्थिति में अमेरिका नेपाल के केने सहयोग ऐक्यबद्धता प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करत बाढ़ में नेपाली संगे विदेशी सेहो प्रभावित भेल प्रति दुख व्यक्त कलन। कार्यवाहक राजदूत बोल्डिन बाढ़ से भेल जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करत वर्तमान कठिन घड़ी में नेपाल सरकार आ नेपाली जनता प्रति अमेरिकी सरकार के ऐक्यबद्धता प्रकट कलन। वो राहत पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण के प्रयास में सहयोग करबाक लेल अमेरिकी सरकार तत्पर रहल बतौलन। बाढ़ से प्रभावित रसुआ नुआकोट धादिंग के परिवार तथा व्यवसायी के सरकार विद्युत सेवा में तत्काल राहत देवा घोषणा कलक। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ विपद के इस समय में प्रभावित नागरिक के राज्य के दिस से राहत के अनुभूति दिएबाक उद्देश्य के संग विद्युत सेवा में सहूलियत देव लागल मंत्री के निजी सचिवालय जनौलक। मंत्री श्रेष्ठ पड़ोसी के हमर साथ अई भावना के संग अन्य ग्राहक से भुगतानी भेल शुल्क समेत प्रभावित परिवार के राहत में उपयोग हेबा सन आवश्यक निर्णय आगू बढ़ाल गेल जानकारी दिलन। ओ नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति के बैठक से भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ से क्षति पहुँचल ग्राहक के हक में भादो महीना से न्यूनतम विद्युत बिलिंग नहीं करबाक निर्णय कैल गेल बतौलन। संगे क्षतिग्रस्त घर व्यवसाय तथा उद्योग लगात ग्राहक के विद्युत मीटर के लगत कट्टा सेहो कैल जात। विद्युत मीटर के लगत कट्टा कैल गेला से प्रभावित ग्राहक पुनः विद्युत सेवा लऽ कर नया मीटर मांग कला पर प्राधिकरण निःशुल्क उपलब्ध करबाक निर्णय भेल मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय जनौलक। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामे छाने बजौने सर्वदलीय बैठक से विपद व्यवस्थापन के लिए सहजीकरण करबाक लेल सर्वदलीय संसदीय संयंत्र बनेबाक निर्णय कलक। बैठक से संसद में सहभागी राजनीतिक दल सबके प्रतिनिधित्व हेबा सन एक हफ्ता भीतर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के लिए संसदीय विशेष समिति गठन के लिए सभामुख के आग्रह करबाक निर्णय कलक। अहिना सर्वदलीय बैठक से भादो 10 गते तिब्बत दिस से आयल रसुआ भोटे कोशी बाढ़ के नामकरण करबाक लेल सेहो सरकार के आग्रह करबाक
निर्णय कैलक अछि। बैठक से रासपा सभापति रवि लामे छाने संयोजक रहल उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र के निरंतरता देवाक निर्णय कैने रासपा के प्रवक्ता जगदीश खरेल जानकारी दिलन। बैठक में सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार नेपाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सहभागी होवला। संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल भोगने क्षति के दावी करबाक लेल सुझाव देने बतौलन। नेता नेपाल जलवायु न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत करवाक पर्याप्त आधार सब नेपाल संग रहला सा प्रधानमंत्री शाह के ई बात उठावक चाही हुनकर कहब छलिन। बैठक पश्चात नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा, राप्रपा के नेता ज्ञानेन्द्र शाही, जनमत पार्टी के अध्यक्ष सी के राउत लगायत नेता सब की सहभागिता रहल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बाल बालिका के सामाजिक संजाल के आदत लगवाक तथा हानिकारक डिजिटल फीचर से बचेबा लेल यूरोपीय संघ ईयू नया नियम प्रस्ताव करवाक तैयारी कैलक अछि। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लियन आ यूरोपीय संसद में बाल बालिका के ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव आगू बढ़ेबाक तैयारी कैलनि अछि। प्रस्तावित ईयू किड्स एक्ट अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बाल बालिका के अपने नाम में सामाजिक संजाल, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, AI चैट बोट तथा किछ ऑनलाइन सेवा में स्वतंत्र खाता खोल के प्रतिबंध लगवाक योजना आगू बढ़ाल गेल अछि। प्रस्ताव के अंतिम स्वरूप ईयू के सदस्य राष्ट्र यूरोपीय संसद बीच के विचार विमर्श पश्चात तय हाथ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन करने का सर्वदलीय बैठक का निर्णय। चिली में जल विद्युत केंद्र की सुरंग में 4 और अपर त्रिशूली जल विद्युत परियोजना 1 की ऑडिट टनल से निकाले गए 5 शव। भोटेकोसी बाढ़ के वैज्ञानिक आधार और प्रमाणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ अध्ययन समिति गठित। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में खोले गए नए ट्रैक से कल सुबह से दोतरफा यातायात शुरू और सोशल मीडिया पर बच्चों की पहुंच नियंत्रित करने की तैयारी में यूरोपीय संघ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने आपदा प्रबंधन में सहयोग और समन्वय के लिए सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन करने का निर्णय किया है। सिंह दरबार स्थित रासोपा संसदीय दल कार्यालय में हुई बैठक ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता वाली आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन संबंधी सदस्यीय संसदीय विशेष समिति एक सप्ताह के भीतर गठन करने के लिए सभामुख से आग्रह करने का निर्णय किया। रासोपा प्रवक्ता जगदीश खरेल के अनुसार बैठक ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन और समग्र विकास निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए रासोपा सभापति रवि लामिछाने के संयोजकत्व वाली उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र को निरंतरता देने का निर्णय भी किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने बाल बालिका संबंधी पहला संशोधन विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता बादी ने विधेयक पेश किया। मंत्री बादी ने कहा कि बच्चों के जन्म पंजीकरण नागरिकता प्राप्ति और अन्य कानूनी जटिलताओं को सुधारने के लिए नया कानून आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को शामिल करने के लिए भी यह विधेयक जरूरी है। नेपाली कांग्रेस के सचेतक निश्चल राय ने भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों के राहत और पुनर्वास कार्य को तीनों तह की सरकारों और संबंधित पक्षों के समन्वय में आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सांसदों ने महंगाई नियंत्रण, दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति, बाढ़ में लापता लोगों की मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनाने, अवरुद्ध सड़कें को जल्द खोलने और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सभा की बैठक में मंत्री मेहता ने कहा कि मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसूति सेवा के लिए निःशुल्क उपचार और यातायात खर्च की व्यवस्था के बारे में जन चेतना बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले राष्ट्रीय सभा में सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन से नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों पर पड़े प्रभाव, बढ़ते हिमस्खलन और हिमालय संरक्षण पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता बताई है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक अश्विन 2 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 पर होगी। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि भोटेकोसी बाढ़ से विस्थापित लोगों के स्थानांतरण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। मंत्रिपरिषद बैठक के फैसले सार्वजनिक करने के दौरान मंत्री पोखरेल ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के अस्थायी आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उपचार सहित अन्य विषयों पर संबंधित मंत्रालय काम कर रहे हैं।
चिलिमे जल विद्युत केंद्र की सुरंग खुदाई के दौरान आज विद्युत गृह क्षेत्र से 3 सुरक्षित शव और 1 मानव अंग मिला है। रसुआ के प्रमुख जिला अधिकारी कमल प्रसाद पांडे के अनुसार नेपाली सेना के नेतृत्व में तैनात सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कर्मियों और भारतीय सेना की सहभागिता वाली खोज एवं बचाव टीम ने विद्युत गृह क्षेत्र से शव बरामद किए हैं। इसी तरह उधार टोली ने अपर त्रिशूली जल विद्युत आयोजना 1 के ऑडिट टनल से आज ही 5 लोगों का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक मिले हुए शवों का पहचान नहीं खुल पाई है। सरकार ने रसुआ की भोटे कोसी बाढ़ के वैज्ञानिक आधार और प्रमाणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ अध्ययन समिति गठित की है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने जल नीति एवं सुशासन विशेषज्ञ देवेश बेलवासे की संयोजकत्व में समिति बनाई है। मंत्रालय के अनुसार समिति बाढ़ के उद्गम स्थल से लेकर पूरे तटीय क्षेत्र तक पहुँचकर स्थलीय अध्ययन करेगी। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत कृष्ण भीड़ में बनाए गए नए ट्रैक से कल सुबह से दोतरफा यातायात शुरू किया जाएगा। त्रिशूली बाढ़ के कारण सड़क का निचला हिस्सा बह जाने और भाद्र 14 गते सड़क धंसने के बाद पृथ्वी राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। इसके बाद पास के पहाड़ को काटकर नया ट्रैक बनाया गया है। पूर्वाधार विकास मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे से यातायात पूरी तरह शुरू किया जाएगा। कृष्णभीर में यातायात शुरू होने के बाद नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के तुइन खोला में आंशिक रूप से रुके वाहनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।

0: गरौं। प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
1: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
2: अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के पुराने प्रावधानको पुनः लागू गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2083 को प्रमाणित किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार संघीय संसद से पारित होकर प्रमाणन के लिए भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति पौडेल ने आज प्रमाणित किया। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के समक्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग की आर्थिक वर्ष 2082-83 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई है। राष्ट्रपति कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरौला ने राष्ट्रपति पौडेल को रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से नेपाल के लिए अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिन ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री शाह ने जलवायुजन्य आपदाओं के जोखिम को कम करने और इसके प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और सामूहिक प्रयास को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यवाहक राजदूत बोल्डिन ने बाढ़ से हुई जनधन की क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए अमेरिकी सरकार की तत्परता व्यक्त की। इसी तरह प्रधानमंत्री शाह से नेपाल के लिए जापान के राजदूत मोइदा तोरू ने भी मुलाकात की। इसी बीच विदेश मंत्री शिशिर खनाल से भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने विदाई मुलाकात की है। सरकार ने माताओं को कम से कम 6 महीने तक वेतन सहित प्रसूति अवकाश और पिताओं को 42 दिनों तक वेतन सहित प्रसूति देखभाल अवकाश देने का प्रस्ताव किया है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने बताया कि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 में संशोधन के लिए तैयार किए गए विधेयक में यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि कला संस्कृति और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आधारित फिल्मों के संरक्षण प्रचार और विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऑस्कर अवार्ड के 99 संस्करण के लिए नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रही फिल्म तिनीहरू एलिफेंट्स इन द फॉग की टीम से मुलाकात के दौरान मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि कला क्षेत्र का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैट बॉक्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे की तरह लत लगाने वाली सामग्री से दूर रखना आवश्यक है। 13 से 15 साल के बच्चों के लिए अभिभावकों की निगरानी वाले मिनी अकाउंट की अनुमति होगी। यूरोपीय संघ ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने बुधवार को स्ट्रासबर्ग में अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन भाषण के दौरान 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैट बॉट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन करने का सर्वदलीय बैठक का निर्णय। चिली में जल विद्युत केंद्र की सुरंग से 4 और 5 अपर त्रिशूली जल विद्युत परियोजना 1 की ऑडिट टनल से निकाले गए 5 शव। भोटेकोसी बाढ़ के वैज्ञानिक आधार और निर्माणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ अध्ययन समिति गठित। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में खोले गए नए ट्रैक से कल सुबह से दोतरफा यातायात होगा शुरू और सोशल मीडिया पर बच्चों की पहुंच नियंत्रित करने की तैयारी में यूरोपीय संघ। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

जग व्यापक राधा, सब उर पुर रह राधा, सब पर करुणा राधा, जय जय कृपालु राधा। लादिनी शक्ति रूपा, जड़ चेतन संपूर्ण जगत में व्याप्त, सब जीवात्मा को हृदय में नित्य निवास करी, सब माथी बराबर करुणा करने, हे कृपामयी राधे, हजुर को सदा जय होस। नित्य किशोरी श्री कृष्ण प्राण प्रिया श्री राधारानी का पावन कोमल चरण को सभक्ति स्मरण गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश द्वारा बिहानी को सत्संग को प्रतीक्षा में रहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे को अभिवादन।

राधा तत्व अलग हो, कृष्ण तत्व अलग हो, यो भेद न ले अपराध हो। एक तत्व द्वि तत्व हो, ये यम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर, रस प्राप्ति हेतु रस पैदा करने को निमित्त, क्रीडनार्थम लीला करने को निमित्त द्विधा भूत, द्वि भाई द्वि तत्व छ। ठीक, दुबई एक हो, बिल्कुल एक, भेद करे के हुन्छ अपराध हुन्छ, एक तत्व। या कृष्ण सापि राधा च, या राधा कृष्ण एव सह। ब्रह्म पुराण पनि वेदलाई समर्थन गर्दै भन्छ, जुन राधा तत्व हो त्यही श्री कृष्ण तत्व, जुन श्री कृष्ण तत्व त्यही राधा तत्व हो। लीला गर्नको लागि दुई भए, एक भगवान ने दुई।

दशव स्कंद पुराण। आत्मा हो आत्मा श्री कृष्ण को प्राण। अब ये तो कॉमन सेंस हो कि शरीर र प्राण में कुन महत्वपूर्ण छ। प्राण महत्वपूर्ण छ। यदि प्राण नहुने हो भने हाम्रो शरीर के हो? लाश, मुर्दा, शव। पंच महाभूत में मिल्छ, चाहे जलाई देव, चाहे गाड़ देव, चाहे पशु पक्षीला खुवाई देव। यानी कि मेन प्राण हो। त्यस्तै भगवान को पनि प्राण तत्व राधा रानी तत्व। यदि राधा तत्व नहुने हो भने श्री कृष्ण के हो? जीरो, नथिंग। कृपालुजी महाराजले यति सरल ढङ्गले यसलाई व्याख्या गर्नु भएको छ। अघि जुन मैले बताएँ तपाईँहरूलाई जो